0: बब्बे पो 80-90 पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो.
1: Your life, your music, your 89.1 FM, NTN Radio.

0: your life, your music, your 89.1 FM, NTN Radio.
1: अमीना बाई, क्यों मां कहते हुए जबान जलती है कमीनी? जबान नहीं, दिल जलता है, रूह जलती है। आहा, एक तवायफ होते हुए दिल और रूह की बातें करती।
2: क्यों, तवायफ इंसान नहीं होती, उसका दिल नहीं होता, रूह नहीं होती।
3: वेश्या सुधार का यह मतलब नहीं कि तुम वेश्या से शादी कर लो। वैश्या अगर गंदगी है तो गले लगाने से सुधरेगी, नफरत करने से नहीं।
2: पहले ही क्या कम धब्बे थे दामन पर, जो एक और लग गया।
4: जिसके स्पर्श से फूल खिलते हो, जिसे चूमने के लिए सूरज की किरणें बेकरार हो, तुम पवित्रता की मिसाल वो शबनम हो। तुम्हारे दामन पर धब्बे,
2: कितनी खूबसूरत है आपकी नजर, जो सदा मुझे इसी रूप में देखती है, मगर दुनिया की नजर
4: शबनम। इश्क की दुनिया होती है महबूब की एक नजर, और वो नजर सामान्य भर के हुस्न से ज्यादा हसीन होती है। तुम्हें चाहने वाला, तुम्हें पूछने वाला जब तुम्हारा हो तो दुनिया की परवाह क्यों, जमाने का डर किस लिए?

0: गुलाबी फूल।
1: हम कहा इका दे तो हम कहा फूल का दे तो फूल।
0: हाथ जोड़ कर फिर वो बोली हो गई हमसे भूल भूल भूल। हमका ऐसा वैसा ना समझो हम बड़े काम की चीज। हमका ऐसा वैसा ना समझो हम गुलाबी फूल।
1: हमका इका दे तो हमका फूल का दे तो फूल।
0: हाथ जोड़ कर फिर वो बोली हो गई हमसे भूल भूल।

0: समझ गए हो ना क्या कहा? हाँ
1: सुनो सुनो, अपने कानों में तेल डाल कर सुनो कि बंदा अपने प्यारों को आदाब बजा लाता है, अपनी अम्मा और अपनी जोरों के सर पे हाथ रख के अपनी कसम दोहराता है।
2: क्या?
1: सुनो,

0: अरे लुट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूख

0: शीशा जारी, अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे।
1: योर लाइफ योर म्यूजिक योर 89.1 FM NTN Radio।